0: हांगहार
1: अंगार दो मिंदुर कोरी इकार गड़ फन रहे रिपीट एरे दिया गड़ तिरी हूं आदि बुद्ध दो होगेरे मिंदम बार गड़ तिरी हूं
0: हांगहार
2: हमें कनी दिवे ही राज्य क्या डूं

0: मुन्ना को बाकी है ना क्या देड़ा ही है
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना रंगल खालो में देड़ा ही है
0: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कौन वड़ा में क्या दक काफ़ूंग अता
2: मुन्ना थी है बुरको हो वैन्ना हिंग कमें ने अफन थी कंको लन्ना
1: थी को तुम हाउ दा है रंगल लाए थी हैं मुन्ना एक ही आहो हाल बला फे मुन्ना रकांग कंको देन्ना है दी मुन्ना वरहा उपावे

0: हम दोनों साथ होंगे तो मुझे लगता है मैं पुल से रात से भी गुजर जाऊंगी।
1: कोई भी तूफान, कोई भी मुश्किल हम दोनों को दूर नहीं कर सकते।
2: मैं तुम्हें बर्बाद करके रहूंगा तजीन।
3: मैंने कुछ नहीं किया।
4: मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बेटी कहती हो। फिर
5: किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा इसने।
3: अम्मी मर गई हो तुम हमारे लिए।
0: मैं जानती हूँ इस पैनिक के पीछे कौन है।
1: कौन?
0: तुम। आई बड़े लवर बॉय।
6: वाह जी वाह, क्या कमाल की एक्ट्रेस हो तुम।
7: देखिए खफा
8: दिवे राज्य गाड़ो मिगटीग कुरिया मिगेंदनी फिल्मी दुनिया प्रोग्राम मी फिल्मी दायरा गे वाहकतक फिल्म तक सीरीज तो गे वाहकत तेबेफुल ना हिसा कुरमा हुशालादे प्रोग्रामे मेदुगे प्रोग्रामे हुशालादेने अलगन नजत रशीद खोम्मे दुवाहकुस फिल्मी दुनिया आ खबर तक का आ वाहक तिलो मुंदाने एंकम अन्ना हफ्ता गविस तेबेफलो ना हमे फिल्मी दायरा या गुले आ वाहक तक तफात जोनरा गे फिल्म तक सीरीज तक तरिन्ना फन्नानु ना गुले मौलोमाता मिनुमवेस फिल्मी दायरा गे तफात वाहक तक गे बद्दव कोलुम गे उम्मीदुगा अळुगंड तेबेफलो ना वकिवेलाना प्रोग्राम उफद्दा मी हुशाला दिने अलगन नजहत रशीद वरंग उफावेरे बाजवेरे दुहकंगे दें वस्सलाम अलैकुम।
9: फिल्मी दुनिया
10: फिल्मी दुनिया
11: मुनिफोई फिलवादी मालूमात के खजाना मुसलिको दे एम में इतुबार कुरवे बैवरिया
12: दिहिराज जेगे अडु
11: इंहा सतरस्तेक 49 किलोहर्ट्स मीडियम वेव 89 मेगाहर्ट्स एफएम बैंड।